0: खिलौना। अस खिलौना का मतलब है कि शस्त्रां का खिलाड़ी, शस्त्रां का धनी। अस खिलौना
1: मेरा तो नाम गोविंद सिंह।

आनको दान न लागत नीको, आनको दान न लागत नीको, आज भले इन्हीं को दियो, आज भले इन्हीं को दियो, जग में जस और दियो सभी को, जग में जस और

जे जे तुमरे ध्यान को। गुरु गोबिंद सिंह कहते जेड़े परवतगार का नाम नित प्रति जपते ने उन्हें प्राप्ति होंगे। साहब फरमाते जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ ध्याए है संत। जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ ध्याए है संत। अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवान। अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवान। आप मुक्त मुक्त करे संसार। आप मुक्त मुक्त करे संसार। नानक जिस जन को सदा नमस्कार। नानक जिस जन को सदा नमस्कार। नित जपिए।

जिस अगे सब निवलन, हर जेठ जुड़ंदा लोड़ी है जिस अगे सब निवलन, हर सज्जन

हर जेठ रंगीला तिस तनी जिसके पाग मथन आसार तपंदा तिस लगे हर नाव न जिन्ना पास आसार तपंदा तिस लगे हर नाव न जिन्ना पास जग जीवन

तन मन मौलिया राम सिंह संग साध सहे लड़िया साध जना ते बाहरी से रहन इके लड़िया तिन दुख ना कबहू।

कंठ मिलिया हर ना हो, पोख तुखार ना व्यापई कंठ मिलिया हर ना हो, मन बेदिया चर

धन को पल ले, निर्धन को पल ले, निर्धन को पल ले, निर्धन को पल ले, निर्धन को पल ले, हाय हाय, निर्धन को पल ले, गुरु नानक दे प्यार विच कलगियां वाले दे प्यार विच इक वारी सारे आखो सतनाम अज पंजवां वीरवार है ये एक प्रकरण जो शुरू होया है खालसा करणी दा नाम है खालसा रहनी दा नाए खालसा अमली जीवन दा नाए खालसा गुणा दा नाए उना गुणा विच्चों एक गुण खालसा सो निर्धन को पाले ते निर्धन नू पालना पांच तरह दा पहला चार तरह का आप जी ने चारे वीर बार सरवन कीता है केवल बोल के लंघदे हां अज पंजवां निर्धन नू पालना महाराज जी सेवा लैण पहला निर्धन नू पालना दसवंद कढ़ना लोड़वंद दी बां फड़नी दूसरा निर्धन नू पालना के किसे दे औगण नू थोड़ा बर्दाश्त करके कलेश दा समा लगा दे ए भी निर्धन नू पालना ए भी निर्धन नू पालना किसे दे औगण नू साध संगत जी बर्दाश्त करके ते कलेश दा समा लगा देना बड़ी बड़ी तप है तप बहुत बड़ा तप है तीसरा निर्धन नू पालना किसे दा हक ना मारना चौथा निर्धन नू पालना रसना नाल अपने नौकर नू अपने तो छोटे काम करन वाले नू घर दे बुजुर्ग नू रसना राई मिठे लफज बोलने वो भी निर्धन नू पालना है सत संग अज पंजवां निर्धन नू पालना मेरे महाराज सच्चे पातशाह सेवा लैण एक बारी आओ सारे माई भाई बड़े प्यार दे नाल ये पंक्तियां बोलो फिर महाराज पंजवां निर्धन नू पालन दी सेवा लैण

0: की संगत रहो, जौ की भूसी खाओ।
1: जौ की तोड़ी थोड़ा कम कटद कट जे, गरीबी कट ल, जौ की तोड़ी खा के गुजारा कर ले, पर नाम जपण वाले की संगत ना छड़। कबीर साधु की संगत रहो,

तू अपना बिरध पछाणिया उना नाम जपिया ते तू उना दी बांह फड़ ले जिन्ना ने तेरा नाम जपिया तू उना दी पैज रखी जिन्ना ने तेरा नाम जपिया तू उना दी सब थावे रखिया कीती जिमें उना दी पैज रखी जिमें उना दी रखिया कीती जिमें उना दी

दासी सुत जन बिदर सुदामा, दासी दा सुत बिदर ते फिर सुदामा। अत गरीब सुदामा, सारी दुनिया दा दलिदर इसदे कर, बाल बच्चा टुकर खान नू मंगदा है बिचारे रो के, रात नू भुखे सौ जांदे हन ते सुतियां बच्चियां नू वेख के माता पिता दियां आही निकल दियां हन। ए बदकिस्मत बच्चे किसे होर दे घर जमदे, ए साडे घर आण जमे, असी एडे निकरमे इन्हां नू पाल पोस भी नहीं सकदे। बेचारे टुकर मंगदे सौ जांदे हन, उठदे हन तां मुड़ टुकर मंगदे हन, पर रोटी कित्थों जुड़े, हर वेले विरलापदे हन, पर आखिए रोजी रोटी कित्थों जुड़े, ओ भगवान दा दिता सराफ किधर जाए। जो भगवान कृष्ण महाराज ने एक

घर वाली दी कन्नी शरोत पई। एक दिन आंधी है सुनिए भगवान सानू भुल गए सन। सुदामे ने रो के आखिया ओ सानू भुले नहीं। आखिया की सबूत है? आखिया भुलदा उना नू है जो उसनू भुला दिंदे। साध संगत बोलो श्री वाह। कहण लगी जे सानू ओ ना भुल दे ते असी अज एडे गरीब ना हुंदे। इतनी गरीबी साढ़े घर विच ना हुंदी तां सुदामे नू ओ दिन याद आ गए जिस दिन भगवान कृष्ण ते सुदामा गुरु संदीपन पास पढ़दे सन आश्रम विच। पढ़दे सन ते गुरुदेव दी सेवा करदे सन। जिवें आखिया सेवा करनी सारी नाले पढ़ना ते गुरुदेव दी सेवा करनी। भाग उना दे जागदे हन जिन्हां ने सेवा कीती है। उना दे पुन्ना नूं भाग लगदे हन जिन्हां ने सेवा कमाई है। ते जिसने गुरु नानक दे घर नूं अपना घर जान के सेवा कीती ओ गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए। इन्हां ने अपने गुरुदेव दी सेवा कीती। एक दिन शामा पईआं मां ने आख्या बच्चो लकड़ा लंगर विच हैण नहीं। भगवान चट तैयार हो गए मां जी हुणे ले आए। सुदामे ने आख्या मैं भी नाल चलदा क्योंकि बड़ा हित सी आपस विच। कठे खेडना कठे पढ़ना कठे खाना। जिस वेले दोनों जान लगे माता दे मन विच विचार आया मासूम बच्चे हन जंगल नू जा रहे हन शायद देर लग जाए मत इना नू भुख लगे। लप छोलियां दी पुजे होए सुदामे दी चोली विच पा के आखिया बचियो जे भुख लगे ता खा लैण। सुदामे ने ओ छोले कुर्ती दी जेब विच पा ले। भगवान अगां जा चुके सन सुदामा पिछों दी जा मिले। जिस वेले जंगल विच पहुंचे लकड़ा कटिया चुक के वापस तुरन लगे ता नेथ नाल बारिश आ गई। रात पैण तो पहला ही बदलां ने रात कर दिती। इन्हां ने मन विच ख्याल कीता जे हुण टुर पए जंगल दा मसला है शायद रस्ता भुल जाइए। हनेरी चक्कड़ विच चलना चंगा नहीं हुंदा। बैठ के रात गुजार लईए तां मन विच सोचिया जे थले बैठे मत कोई जानवर आ जाए। इस करके वृक्ष ते चढ़ बैठ देखा इक मुड सी दो टैन सन। इक ते भगवान कृष्ण ते दूसरे ते सुदामा। साध संगत बोलो श्री वाहे। क्योंकि नाता है भगती दा। एक बार भगवान कृष्ण महाराज ने अर्जुन नु आख्या सी हे अर्जुन मैं भगतन का भगत हमारे सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी। हे अर्जुन मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं भगतन का भगत हमारे सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी। भगतन काज लाज हो छोड़ो पैर प्यादे तामो जहां जहां पीड़ पड़े भगतन को मैं तहां तहां जाए छुड़ा। अखे जो जो मेरे

आखिया अर्जुन तेरा मेरा की संबंध है आ भगती दा, तू रथ ते बैठा होए ते मैं तेरा रथवान रथ नू चला रे, ए किस दे सदके ए प्यार दे सदके भाई, जिवें उन्हां नू तारे आ जिवें उन्हां दी बांह।

मैं जो आख्या भी मैं कुछ नहीं खा रहे। सत्संग बोलो श्री वाह। आख्या भगवान तुसी मेरे मित्र हो और मित्र दे उते शक करना ये ठीक नहीं हुंदा। ते तुहाडे मन विच ए आया कि मेरे कोल कुछ है और मैं कला खाई जान। नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। ता सुदामे ने दूजा झूठ बोले। भगवान मुस्कुरा रहे सन। उस अगे झूठ बोली जांदा है जो अंतर जामी है। हर अंतर जामी सब विद जाने। उस अगे झूठ बोली जांदा ते जिस वेले मारिया तीजा पक्का। भगवान कहन लगे सुदामिया मन ना मन भई कुछ ता खारे। आखिया इतबार नहीं आया। कह लगे सुदामिया मैनू आवाज पई आउंदी है। तेरी जबान ते इतबार करा जा अपने कन्ना दे उत्ते। तू सचो सच दस दे मैं तेरे कोलो वंडदा नहीं। सुदामा रोण लग पे है कि तुहाडे कोलो छुपा के की खाना सी। ता अचानक भगवान दे मुंह निकलिया जा ओए दलिदरी। सुदामा दलिदरी हो गया गरीब हो गया। जिवें भाई साहब आखदे हन बेपत सुदामा दाल दी। बाल सखाई मित्र सदाए। बाल सखाई मित्र सी सुदामा। एक दिन कारवाली ने आखिया ठीक है कि भगवान कृष्ण तुहाडे मित्र हन। उन्हें आख्या कोई शक है फिर एक बार जरूर जाओ उन्हां दे कोल। किते मन विच ए ना आवे भी सुदामिया तू एडा गरीब रहे हो एक बार मेरे कोल ता आउनो। लागू होई ब्राह्मणी मिल जगदीश दलित्र गवाए। आख्या एक बार जरूर जाओ। ता बहाना लगाया भी एडे वड्डे पास जावा नाल ले जाण नूं कुछ है नहीं। आख्या ए प्रबंध मैं कर देनी हां। गुआंढण दे कोल गई उगों धान पई छटदी सी। उन्हें आख्या मेरे घर वाले ने भगवान नूं मिलण वास्ते जाना है पर साडे कोल ले जाण नूं कुछ नहीं। जे तू कुछ उधारा देवे। उन्हें लप चौलां दी चोली विच पा दित्ती ते आख्या लै जा। पोटली विच बन के चोल जिसले सुदामे दी तली ते रखे ते आख्या लै जा। भगवान नूं जरूर जाके